अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआं जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पईआं। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उसदे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू ला। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धीआं विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वालू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी दी लगदी, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी दी भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी हो। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, या कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खार, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान। ये गल वखरी है सात संगत, इस दुख च साहबा ने कहा ना गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी, सतगुरु सदा दयाल है भाई। गल एनी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्ना दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इस नूं, कंडे हेड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा। मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उन्हूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे। पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तांकी केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने। इह कन्नां तों वी कमला, इह नासां तों वी कमला, अखां तों वी कमला, जीभां तों वी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों वी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना उदन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तों भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तों ही दोख तों ही दुख पैदा हुंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा ते दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहिदा। साहिबां ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तू अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहिदा, ओ संकल्प महाराज ने बख्शे है। पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल।
चरण कमल जाई बलिहारा तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा अज तेथो विछड़ गए मुड़ के दोष आ गए मुड़ के दुख आ जाणगे तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो साध संगत से उपरीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई एवी तेरी रहमत जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लग के ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू नानक मांगे दान प्यारे मैं तो यही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है मुंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तले अपने आप नू छुपा के ए अपने नेड़े तेड़े फिरदा है महाराज कहन लगे फड़ लो सिखा ने जाके घेर लिया फड़ लिया रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर किया गया साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मूह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा जो कुछ तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ कौन है तू कहन लगा जी पठान पुत्र ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾ ਇਧਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚਾਦਰ ਖੁਲਾਓ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨ ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਵਫਾਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੇਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਇਹਦਾ ਖੇਸ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਐਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕੂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ
रोटी खादिया कई चिर हो गया है, मंगना मेरी शान दे खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है, जिसले साखी पढ़ने पठान कहिंदा है मंगना पठान दी शान दे खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहिंदी है, लोक तिकार कहे मंगत जन मंगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तिरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। ऐसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल सहदा दरकार नाल नहीं खान नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई तरह का भुखा दा मारिया, अज मैं ये फैसला कर रहा भी जो मिल गया खा लेना, ते मरिए जा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता था कितने नुकरे बह के इसे नू चब लवा, इसे नू भुन के जिवे भी होवे इस नू खा लवा ते अपने पेट की अग बुझा लवा। साहब कहन लगे नू लंगर छकाओ, सोने बस्तर पुआओ। कहन लगा महाराज मैं तुहाडा दुश्मन हो सकना, दोखी हो सकना, लंगर छका दियो तुहाडी बड़ी कृपा है क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा। साहब कह लगे तू इथे ही रहेगा। कह लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए, कहन लगे नहीं इथे भाई घनैये वर्गे बेअंत ने जेहड़े किसे नू दुश्मन नहीं समझदे, किसे नू वैरी नहीं जानदे, तू इथे रहेगा। आम उन्हां समयां च टकियां च रसीने मिलदे सन। साहबां ने रुपया रोज दा ला दिता। कहन लगे इहनू गुजरान मात्र रुपया रोज दा दिओ। कहन लगा साहब जी किस गल दा, तुसीं इह रुपया रोज मैनू किस गल दा बख्शदे। साहब कहन लगे भुखां दा मारे हैं, गरीबी दा मारे हैं, देशों प्रदेश आया कमाउण वास्ते, तेरे बाल बच्चियां वास्ते, तेरी किरत मात्र, कि महाराज मैं करांगा की। साहब कहन लगे जो तेरा जी करदा है, इत्थों कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर लई, ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया, गुरु कीआं रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया, गुरु का डर नहीं छड्डिया, सेवा च लग गया। इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तगड़ा हो गया, पैसे भी हो गए, हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बरादरी वालिआं ने तेरे बंदिआं ने वेख लिया तैनू काफिर कहणगे, तैनू दोषी करार देणगे। ओह कहिंदा नहीं, दोष निकल गए जीवन विचों, जिसने खुदा नाल जोड़े है इन्ना परउपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है, जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, उहदिआं ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, ते मैं इहनू छड्ड के होर किते कोल चला जां, इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साडे किन्ने ही दुख, उहदी इक भुख दा दुख महाराज ने दूर कीता ते हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणा तों। साडे किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे। गुरु के सिख दा की फर्ज बनदा, ओह सदा इह गल हिरदे च धारण करके रहे कि साहब तेरे दर तों सरदारियां पाईआं ने, भुखां मिटियां ने, मान मिलिआ है, भरम मिटे ने, दूई मिटी है, हिरदे नूं शांति प्राप्त होई, बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते ए होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा। बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने, दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जान, भरम निकल जान, बंदे नूं चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

तेरे काज न बिखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम

संग उजियारा जहां पंत तेरा को न सिजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महाभयान तपत बोघा तै हर के नाम की तुम ऊपर छा जहां त्रिकामन तुझ आ

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मेनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उनू अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लाग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दां, अवगुण को न चितार दां, गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु

ऐसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे।

अकाल मूरत अयोनी सहंग और प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात निहिंजे रूप रंग रवि पी भूकर सत्य है अचल मूर्तन हो प्रकाश अमित तूज कहिंज भूत इंद्र इंद्राम शाहो शाहान गणिज फिर भवन में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुर आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर स्वभाव चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आदारी नानक दास संत पाछा परयू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नौ निज पाइया सतगुर

मेरी चोली किसी ने नहीं पड़ी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारियां दा दिलां दा हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा राह गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जब आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 दे करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अधे कीर्तन विच बह जाओ, ते अधे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला

गुरुअर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण छिलो मार्ग गोविंद। ए केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकदा। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी, ओदे गुण गाउणे। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया है, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हन के नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़ियां जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

मरण लिखाए मंडल में आए, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। हर जो जन्मे है, हर जो बने है, हर जो उपजे है, उस हर एक ने मरना ता है। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, बाकी ये गल वखरी है। ओ मौत जो आम लोकां वास्ते, जिवे कबीर जी दा बचन सी, जिह मरने सब जगत तरासिया, जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी। मौत ता पता नहीं कदों आउणी, मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखिया, जीण नहीं पई देंदी। जिह मरने सब जगत तरासिया, सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत, जिदा नां लैणा चंगा ही समझा जांदा। चार बंदे बैठे होण, कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे, कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर, मौत दी गल माड़ी गल है, मंदी गल है, चंगी नहीं लगदी, जीण दी गल कर, मौत दी गल ना कर। जिस नूं भाई मूले ने, भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ लेके दिता सी, जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान किया सी मरदानिआं, कोई तां समझ वाला बैठा इत्थे सियालकोट विच, जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है, और है भी सच। जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने, शक हो सकते ने, शंके रह सकते ने। गर्भ विच है जो इस दा जन्म होवेगा, जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी, कोई पक्की गल नहीं है, शंके वाली गल है। जिस दा जन्म हो गया है, इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी, शंके वाली गल है। ये बोल सकेगा, ये तुर सकेगा, शंके वाली गल है, डर बनिया रहिंदा है, पता नहीं चल सके ना चल सके। सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले, कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं, परिवार वाला बन सकेगा के नहीं, कारोबार चल सकेगा के नहीं, हर किस्म दे शंके हो सकणगे। लेकिन एक गल परपक है, हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर, मौत ना टल सकेगी, हर जीव ते आवेगी। पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है, जो हर हालत च वापरना ही सच है, ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओ झूठ है। फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो, झूठ दी करो, मरण दी गल ना करो। जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जम पकड़े लै जाए जियो। मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए, बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तो बच सकण दे, ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा। जो सच है, जो वापरना है, इस तो बंदा डरदा, कहिंदा दी गल ना करो। जे मरने सब जगत तरासिया, कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है, मरण विच भी एक आनंद है। कबीर, जिस मरने ते जग डरे मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने, शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओ हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो, आत्मक मौत बंदा मर जावे, मरिया ही होवे। एक तां ओह मौत है, मैं कमाउंदा मर गया, मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया, मरिया ही होया बंदा, जीवन शुरू ही नहीं होया, क्योंकि जीण दा चज नहीं आया। एक ओह मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी, लेकिन एक मौत होर भी, ओह है मनुख दी हौं दी मौत, मैं मेरी दी मौत। जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है, इस पासे दी मौत हो जांदी, हौं दी मौत हो जांदी, ते बंदा इस मौत तो भी डरदा। जिस नूं इह मरना आ गया ना, उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया। जिन्हों धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया, वह शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है, बड़ी तुच्छ समझदा है। जिन्हां नूं चज नाल जीना आ गया है, सच्ची गल तां इह है कि चज नाल मरना भी उहनां नूं आया। कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया, गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया। अब कैसे मरो मरण मन मानिया, मरण ते चित करदा है, हौं करके मरण नूं चित करदा है। उंज वी जे मौत आवे जी आया, मोए मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, उधर जीवन शुरू हो जावे। मर मर जाते जिन राम ना जानिया, मरदे ता ओ ने, मरदे ही रहिंदे ने ओ, जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने। जिन्हां नूं रब दा पता नहीं, राम दा पता नहीं, ईश्वर दा पता नहीं, धर्म दा पता नहीं,
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालन दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हालत च वापरन वाली चीज है, मनुख इहदे बारे बड़ा ही अवेसल है, उहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं। जिन्हां नूं मरना आया कबीर जी उन्हां दी गल करदे ने, सहजै मरे अमर होए सोई। कुछ लोग ऐसे हुंदे ने शरीर करके मर के भी नहीं मरदे, उन्हां दा जीवन अनंत है, चलदा ही रहिंदा है, क्योंकि अनंत विच वाहिगुरु विच अभेद हो जांदे ने। उन्हां वास्ते मरना कादा माड़ा है। महाराज धन गुरु नानक पातशाह वचन करदे ने ना।

के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल जाव गोर घर देखी कुल काव तेरा नाम है पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल जाव गोर घर देखी कुल काव तेरा नाम है जी दुख दुख सद पुन सद लगती।

हीरे लालां तो महंगे श्वास तू मिट्टी विच रोल के चला जावे जीवन दी बाजी हार के जेड़े जांदे हन उना नू फिर कदे अवसर मिलिया नहीं हजूर दा बचन है के जीवन दे नौ हिस्से तेरे लिए हन भाई हस खेड अपने बच्चियां विच सुख मान आनंद मान अपने कार विहार कर जीवन दे नौ हिस्से तेरे अपने हन पर निरंकार ने एक गल दा चेता कराया जीव नू के ऐ मनुख दसवां हिस्सा श्वासां दा तू गुरु दे लेखे लावी उस

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।

जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाणे। तेरे आ भक्तों को बलहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा। खिन में और खिने में औरा अचरज।

धुंध मिट गई। संसार ते पापां दी धुंध छाई हुई सी, कोई कर्म कांडां विच पिया, कोई जोगियां दे पिछे पिया, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है। परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी, पाप विच रुझिया होया संसार। ते जदो अपने बढ़ाए हुए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने, के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष दी अग विच जल रही है, ता निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तू मैं क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया, मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड़ के सारा खलियान खेत खराब कर देता। एदा हरजाना पर भाई तेरा पुत्र है ना नानक? मैं ता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू, कोई कम कार नहीं करदा, वेले बैठा रहंदा है। एक काम इस नु करन वास्ते भेजा सी, ओ भी उजाड़ के आ गया।

मोदी खाना ले दिता, आख्या इथे बैठ के हुण दुकान करेगा ता इसका चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे कर दे, गुरु नानक ओदी चोली भर देंदा। एक दो तीन चार पांच जेड़ा आई जाऊंदा गुरु

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वद निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च करदे हन, जो परमेश्वर दे रस्ते ते खर्च

आवाज आई आनानक मैं तेनु संसार ते हटियां करन वास्ते ता नहीं भेजिया, मैं ता तेनु संसार विच भेजिया जगत जलंदा जल रहे है उनानु जाके ठारना है तू। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हाथ जोड़ के बेनती की, हे निरंकार मेनू उपदेश दियो मैं संसार नू की जपावा, मैं संसार नू की जपावा। आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नू जपाउना है, जगत जलंदे नू ठारना है, ए उपदेश दे के। उस जोत विचों आवाज आई।

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पवोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। सत सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां।

कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाने। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे। सत सिखत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो

उस बच्ची ने सुनिया के इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरणा दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगता नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो एक प्रभु दा सिमरन करो उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।